0: ஆஹா என்ன பொருத்தம் படத்திற்காக கோபால் சர்மா சொர்ணலதா பாடிய பாடலை கேட்டோம். பிஆர்சி பாலு அவர்களுக்கு இசை வித்யாசாகர்.
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना।
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।